विपुल छेत्रीको ए साथी मिठो गीत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। समय अहिले ब्रुनाईमा बिहानको 8 बज्नको लागि 15 मिनट बाँकी रहेको छ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरको। युएस डलर 1 को खरिद दर 150 रुपियाँ 64 पैसा, बिक्री दर 151 रुपियाँ 24 पैसा। युरो 1 को खरिद दर 172 रुपियाँ 67 पैसा, बिक्री दर 173 रुपियाँ 36 पैसा। पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 199 रुपियाँ 15 पैसा, बिक्री दर 199 रुपियाँ 95 पैसा। स्विस फ्रैंक 1 को खरिद दर 187 रुपियाँ 34 पैसा, बिक्री दर 188 रुपियाँ 9 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 105 रुपियाँ 54 पैसा, बिक्री दर 105 रुपियाँ 96 पैसा। कनेडियन डलर 1 को खरिद दर 106 रुपियाँ 62 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 5 पैसा। सिंगापुर डलर 1 को खरिद दर 116 रुपियाँ 70 पैसा, बिक्री दर 117 रुपियाँ 17 पैसा। जापानिज यन 10 को खरिद दर 9 रुपियाँ 36 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 40 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 22 रुपियाँ 25 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 33 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिद दर 40 रुपियाँ 14 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 30 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 33 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 49 पैसा। थाई भाट 1 को खरिद दर 4 रुपियाँ 59 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 61 पैसा। युएई डिरहम 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 18 पैसा। मलेसियन रिंगित 1 को खरिद दर 36 रुपियाँ 59 पैसा, बिक्री दर 36 रुपियाँ 73 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिद दर 9 रुपियाँ 79 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 82 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिद दर 15 रुपियाँ 72 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 78 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिद दर 23 रुपियाँ 10 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 19 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिद दर 19 रुपियाँ 22 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 30 पैसा। कुवैती डिनार 1 को खरिद दर 490 रुपियाँ 21 पैसा, बिक्री दर 492 रुपियाँ 16 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरिद दर 399 रुपियाँ 57 पैसा, बिक्री दर 401 रुपियाँ 16 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिद दर 391 रुपियाँ 29 पैसा, बिक्री दर 392 रुपियाँ 85 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौँ एकदेव लिम्बु र सिम्पल खरेलको स्वरमा फिजेको केश।